कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी, शरीफ हूँ।

0: SBS South Asian.
1: Sorry, not gonna ask again.

0: South Asian.
1: और सुनना है तो सब्सक्राइब करो टी सीरीज।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS उर्दू फर्स्ट नेशन बाशिंदों को इस सरजमीन के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करना चाहता है जहां से हम आज का प्रोग्राम नशर कर रहे हैं. SBS उर्दू इस जमीन के माजी और हाल के वारिसों और उनके आबाओ अजदाद को तस्लीम करने के साथ एबोरिजिनल और टॉरेस आइलैंडर्स को भी यहां के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करता है. अस्सलाम वालेकुम. आज 3 जून है, बुध का दिन, सन 2026 और आपका मेज़बान रिहान अलवी उर्दू नशरियात के साथ हाजिर है. उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे, जहाँ जहाँ होंगे ठीक होंगे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे होंगे. आइए नज़र डालते हैं कि हम आज के प्रोग्राम में आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं. हज़्ब मामूल कुछ देर बाद आप हमारी मुख्तसर ख़बरों का बुलेटिन सुनेंगे और इसके बाद हम आपको कुछ गीत और नगमे भी सुनवाते हैं. हज़्ब मामूल वो भी रहेंगे, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया में जिक्र रहेगा एबोरिजिनल झंडे या एबोरिजिनल फ्लैग का. आपने अक्सर स्कूलों, दफातर और कई दीगर अवामी मकामात पर ऑस्ट्रेलिया के कौमी परचम के साथ ये सुर्ख, सिया और पीला झंडा देखा होगा. इसकी तारीख और इसके बारे में आज ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में जिक्र करेंगे. साथ ही आपको कैनबरा लिए चलेंगे, वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भारतीय नजात कव्वालों के साथ मिलकर कव्वाली की एक बज्म सजाई जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ ने शिरकत की. इस तकरीब का आंखों देखा हाल आज के प्रोग्राम में शामिल रहेगा और इस की वीडियो पोस्ट और रील भी आप SBS उर्दू के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर देख सकेंगे. साथ ही हम आपको आज पाकिस्तान भी लिए चलेंगे और हालात हाजरा में आप सुनिएगा कि वहाँ क्या हो रहा है. गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी है, अलीमा खान की डील की खबरों की तरदीद और पाक हालात हाजरा में सुन सकेंगे तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बातचीत. और बजट भी मुल्क में एक अहम मौजू है इस वक्त सियासी लैंडस्केप पर. इसके अलावा आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के मारूफ गुलोकार सलीम जावेद से, जो इन दिनों ऑस्ट्रेलिया आए हुए थे. पाकिस्तान की मौसीकी का एक नुमाया नाम रहे हैं वो. ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी शानदार कारकर्दगी के बायस वो काफ़ी मशहूर रहे. उनकी दिलचस्प गुफ्तगू और कुछ गीतों की झलकियाँ आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी. ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में शामिल रहेगा, मगर हज़्ब मामूल पहले चलते हैं इस वक्त तक की ताज़ा तरीन मुख्तसर ख़बरों की तरफ. तीन जून बरोज बुध की मुख्तसर उर्दू खबरों के साथ मैं हूं रेहान अलवी. सोलोमन आइलैंड के नौ मुंतखब वजीर आजम मैथ्यू वेले अपने पहले दौरे पर कैनबरा पहुंचे हैं, जहां उनका खैर मकदम किया गया है. ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन आइलैंड तवक्के है कि इस दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन आइलैंड के दरमियान एक जामे मुहिदे के सिलसिले में बातचीत होगी, जबकि चीन के साथ मौजूदा बहरुलकाहिल ममालिक के सिक्योरिटी मुहिदे का सरेनौ जायज़ा लिया जा रहा है. यह मुहिदा बहरुलकाहिल के हमसाय ममालिक के साथ होने वाले सिलसिलेवार मुहिदों में ताज़ा तरीन है, जिसका मकसद खित्ते में चीन के असर व रसूख का मुकाबला करना है.
2: This treaty will allow Australia and the Solomon Islands to confront global and regional challenges as partners. This is a significant body of work and we've asked our foreign ministers to lead and drive this forward.
3: ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया के दरमियान आपदोस्त के मुहिदे पर बहस छिड़ गई है, जबकि लेबर के साबिक वजीर एड ह्यूजिक ने इस मुहिदे पर दोबारा मुजाकरात का मुतालबा किया है. वजीर खारजा पैनी वोंग ने ऑकस आपदोस्त मुहिदों में हालिया तब्दीलियों का दिफा किया है. लेबर के बैक बेंचर्स का कहना है कि लेबर पार्टी के अंदर इस मुहिदे पर बेचैनी पाई जाती है और हुकूमत को अपने मौकफ पर नजरसानी करना चाहिए. दिफाई मुहिदे पर शकूक उस वक्त बढ़ गए जब हालिया ऐलान में बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिका से सिर्फ इस्तेमाल शुदा जौहरी आबदोजें खरीद रहा है. ताहम 9 के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू करते हुए पैनी वोंग ने इस मुहिदे पर किसी किस्म के वोट या नजरसानी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया. ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स के अहलकारों को आने वाले हफ्तों में पोलैंड भेजा जा रहा है. ये इकदाम रूस के साथ जारी जंग में यूक्रेनी फौजियों की तरबियत के लिए किया जा रहा है. ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स के अहलकार जल्द पोलैंड पहुंचेंगे, जहां वो यूक्रेनी फौजियों की तरबियत का काम करेंगे. ऑस्ट्रेलिया के अवाम को ऑनलाइन गैर कानूनी जुए और गैम्बलिंग से मुंसलिक स्कैमिंग फ्रॉड में इजाफे से खबरदार किया जा रहा है। टेलस्ट्रा के साइबर सिक्योरिटी के माहिर डैरन पावली का कहना है कि ऑनलाइन फ्रॉड और जुआ एक तेजी से बढ़ता हुआ खतरा है, जिसके बायस लोग पहले ही सालाना तकरीबन 2.2 अरब डॉलर का नुकसान उठा रहे हैं। और अब कुछ आलमी खबरें। इसराइल की जानिब से जनूबी लबनान में हमले जारी हैं, अगरचे हिजबुल्ला के साथ कशीदगी कम करने के लिए जज्वी जंग बंदी भी मौजूद है। लबनानी सेहत हुक्काम के मुताबिक कम अज़ कम 10 अफराद हलाक हुए हैं, जिसमें अस्पताल का अमला भी शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात मुअत्तल होने की खबरों को गलत और बेबुनियाद करार दिया है। मिस्टर ट्रंप का कहना था कि वाशिंगटन और तहरान के दरमियान बातचीत मुसलसल जारी है और अब वक्त आ गया है कि किसी तरीके से मुआहदे पर पहुंचा जाए। ईरान और अमरीका ने एक दूसरे पर खलीजी खत्ते में मिज़ाइल हमलों का इल्ज़ाम लगाया है और दोनों जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ की गई हैं। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि उसने ईरान के जज़ीरे कुशम पर दिफाई कार्रवाई के तौर पर हमले किए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि तैयारा बरदार बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन बहरे अरब में अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। और आखिर में खेल। लाहौर में खेले जाने वाले दूसरे वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त देकर 3 रोजा मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। ऑस्ट्रेलियन कप्तान जॉश इंग्लिश और कैमरन ग्रीन की निस्फ सेंचुरियों के बावजूद कई बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलरों के सामने बेबस नजर आए। इसके बावजूद इनिंग्स के आखिर में ओलिवर पैक की तेज बैटिंग के बदौलत ऑस्ट्रेलियन टीम पहले मैच के मुकाबले में ज्यादा बड़ा हदफ देने में कामयाब रही। 232 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 44वें ओवर में 190 रन पर आउट हो गई। उबूरी कप्तान जॉश एंग्लिस का कहना था कि उनकी टीम को महसूस हुआ कि ये स्कोर जीतने के लिए काफी है।
4: I think mostly it was probably on the batting front. I know guys had some good conversations around training yesterday just about individual method and how they were going to go about it, and it was obviously dependent on the wicket, and it looked very similar to the other day. So I thought the guys played it really well today. There were some good contributions across the board and some good partnerships.
3: Yahi par is waqt ki mukhtasar khabrein khatam hui. Main hoon Rehan Alvi aur aap hain SBS Urdu ke saath. Taaza tarin malumat ke liye sbs.com.au/urdu par jaiye. यहाँ एक याद दहानी आपको कराता चलूं कि SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न वक्त के मुताबिक सपहर 3 बजे पॉप देसी पर नशर होती हैं। बुध का प्रोग्राम SBS 2 पर शाम 6 बजे और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को शाम 6 बजे नशर मुकर्रर के तौर पर नशर किया जाता है। अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताज़ा मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। इसके अलावा SBS उर्दू इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। SBS साउथ एशिया पर उर्दू प्रोग्राम का इंतखाब कीजिए। और ख़बरों से आपने आगाही हासिल की, और इससे पहले कि हम कुछ और संजीदा मौजूआत और हालात हज़रा की तरफ बढ़ें, क्यों ना सौत आहंग की दुनिया में आपको लिए चलें। सुनवाते हैं आपको नबील शौकत अली का ये गीत, जिसमें जुदाई की कसक और बिछड़ने का दुख दोनों ही शामिल हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे नबील शौकत अली की आवाज़ में ये गीत, और एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं। वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में सुनवाएंगे कि स्कूलों, दफातर और दीगर अवामी मुकामात पर आप ऑस्ट्रेलिया के कौमी झंडे के साथ जो एक और झंडा देखते हैं, सुर्ख, सियाह और पीले रंग का झंडा, उसकी तारीख क्या है और इंडिजीनियस लोगों से उसका कल्बी ताल्लुक क्या है। इसके अलावा आपको कैनबरा भी लिए चलेंगे और वहाँ भारतीय और पाकिस्तानी लोगों ने मिलके कव्वाली की एक खूबसूरत बज़्म सजाई, उसका जिक्र रहेगा। साथ ही पाकिस्तान के हालात हाजरा की बात होगी और ऑस्ट्रेलिया आए हुए मारूफ गुलोकार सलीम जावेद से खूबसूरत बातें और उनकी गीतों की झलकियों के साथ कुछ ना कुछ आपके लिए शेर व सुखन का रंग लेकर आएँगे। ये सब कुछ थोड़ी देर बाद। आइए चलते हैं एक वक्फे की तरफ, मगर हमारे साथ रहिएगा।
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: SBS फूड के जरिए दुनिया भर के खाने आपके दस्तरखान पर, खानों की हजारों रेसिपीज, आर्टिकल्स और वीडियोस देखने के लिए sbs.com.au/food पर जाइए। आप हैं SBS उर्दू के साथ और मैं हूं रेहान अनवी, और आइए अब आपको लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन की तरफ। और ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में आज जिक्र है एब ओरिजिनल झंडे का, यानी इंडिजीनियस फ्लैग का।
6: सामीन, क्या आपने ऑस्ट्रेलियन परचम के साथ सुर्ख, सियाह और पीले रंग का झंडा लहराते देखा है? ये एब ओरिजिनल झंडा है। ये ऑस्ट्रेलिया के मकामी लोगों और ज़मीन, बरादरी और कहानियों से उनके ताल्लुक की नुमाइंदगी करता है। बहुत से लोगों के लिए एक झंडे से ज्यादा है। ये ताकत, बका और शनाख्त की अलामत और याद दहानी है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास एक नामजद कौमी परचम मौजूद है, सरकारी तौर पर तीन परचमों को पहचाना जाता है जिनमें एबोरिजिनल और टोरेस आइलैंडर झंडे शामिल हैं। एबोरिजिनल झंडा हमेशा से मौजूद नहीं था। ये झंडा 1971 में लोरेटेजा और मुंबई के फनकार और कारकुन अंकल हेरोल्ड थॉमस ने डिजाइन किया था, जो जुनूबी ऑस्ट्रेलिया के स्कूल ऑफ आर्ट के पहले एबोरिजिनल ग्रेजुएट थे। इसे पहली बार 12 जुलाई 1971 को एडिलेड में जमीनी हुकूक के एहतजाज के मौके पर लहराया गया था, जिसे उस वक्त नेशनल एबोरिजिन्स डे कहा जाता था। ये एक ऐसी इस्तिला है जिसे अब फरसूदा समझा जाता है। एक साल बाद ये कैनबरा में एबोरिजिनल टेंट एम्बेसी में एक ताकतवर अलामत के तौर पर सामने आया, जो जमीन के हुकूक और कुदरतियत की नुमाइंदगी करता था। 1995 में ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने इसे बाज़ाब्ता तौर पर ऑस्ट्रेलिया के परचम के तौर पर तस्लीम किया। इसका डिजाइन सादा लेकिन बामानी है, मकामी लोगों के लिए सियाह रंग है, मुल्क के लिए और जमीन से ताल्लुक के लिए सुर्ख, जबकि जिंदगी के मरकज में सूरज की निशानदही के लिए एक पीला दायरा मौजूद है। गोमरोई खातून और उभरती हुई आर्टिस्ट जेड ब्रेनन बताती हैं कि वो झंडे में क्या देखती हैं।
7: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation. It's the Aboriginal people.
6: वक्त के साथ चीजें कैसे बदलती हैं समझने के लिए हम वनारा खातून आंटी सोजेन कैंडल से सुनते हैं। वो 1960 से 70 की दिहाई में न्यू साउथ वेल्स के इलाकाई कब्जे कॉन्टबोलन में पली बढ़ी। वो एक वक्त याद करती हैं जब झंडा वसी पैमाने पर नहीं देखा जाता था। उनकी एबोरिजिनल परचम की पहली याद स्कूल या काउंसिल के दफ्तर में नहीं है बल्कि इसका टेलीविजन पर नजर आना है।
8: I actually saw the flag on telly in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. That was as far as Aboriginal education went in the early days.
6: उनकी नस्ल के लिए झंडा वो चीज है जो आप एहतजाज या टीवी पर देख सकते हैं। ये अभी तक रोजमर्रा ऑस्ट्रेलिया का मामूल का हिस्सा नहीं है। ये तुम्हारे लोग हैं, जेड ने झंडे के साथ बड़े होते हुए कहा। नौजवान एबोरिजिनल लोग जैसे जेड के लिए तजर्बा बहुत मुख्तलिफ है। वो अपने इर्द गिर्द एबोरिजिनल परचम के साथ बड़े होते हैं। जेड ने अपने बचपन मेट्रोयल सिडनी के मशरक में गुजारा। वो एक दीवार पर बनी तस्वीर को बहुत वाजे याद रखती हैं।
7: I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there, and I just remember there used to be this big Koori flag mural, and it was so big, it was overwhelming for my little body.
6: जैसे जैसे जेड बड़ी हुई झंडा रोजमर्रा के अंदाज में जाहिर हुआ।
9: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
6: उनके लिए झंडा इसे दूसरे हुजूम और इत्तेहादियों को पहचानने में मदद करता है। ये उन्हें बताता है कि उनके साथ कौन खड़ा है, यहाँ तक कि हुजूम में भी। जब 1995 में एबोरिजिनल झंडा ऑस्ट्रेलिया का सरकारी झंडा बन गया तो आंटी सुजैन ने पहले छोटी तब्दीलियों को वकू पजीर होते देखा।
8: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying, or the police didn't have it. You saw it once and you just thought, that's great.
6: वक्त के साथ झंडा नायाब से मामूल की तरफ मुंतकिल हो गया।
8: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that.
6: अब जब आप Aboriginal परचम देखते हैं तो आप जानते हैं कि ये किस चीज की नुमाइंदगी करता है और इसकी तारीख क्या है। इस सामईन आप सुन रहे थे SBS उर्दू पर ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड और मैं हूँ वर्दा वकार।
0: अभी आप ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन सुन रहे थे और ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन की और भी बहुत सी किस्तें हैं जो हमारे वेब पेज के ऊपर आपको मिल जाएंगी sbs.com.au/urdu पर। और हमारा उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में वर्जन में हमारा वेब पेज मौजूद है। इसके अलावा हम फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं जहाँ हम वीडियोज़ भी आपके लिए पोस्ट करते हैं और रोज़ाना हम खबरों का एक मुख्तसर बुलेटिन भी आपके लिए लेकर आते हैं। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं कैनबरा। कैनबरा में पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने भारतीय नजात कव्वाल के साथ कव्वाली की बज़्म सजाई जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ ने शिरकत की। तकरीब का आंखों देखा हाल सुनिए मोहम्मद रियाज से जो वहीं मौजूद थे।
10: आप SBS उर्दू के साथ हैं।
11: सामईन इस पॉडकास्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद रियाज। इस खसूसी पॉडकास्ट में हम आपको लिए चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में जहां पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक रंगारंग कवाली नाइट का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में ऑस्ट्रेलवी कवाल ग्रुप ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस के जरिए कवाली की रिवायती सिन्फ को पेश किया और हाजरीन से खूब दाद समेटी। इस मौके पर मुंतजमीन कहते हैं कि इस तकरीब के इनेकाद का मकसद न सिर्फ पाकिस्तानी और बरसगीर की सकाफती रवायात को फ़रोग देना है बल्कि ऑस्ट्रेलिया में मुकीम नौजवान नस्ल और तलबा को कवाली जैसी क्लासिक मौसीकी और सूफियाना रिवायत से रोशनास भी कराना है। इस मौके पर मुंतजमीन समेत दीगर शुरुका ने SBS उर्दू से खसूसी गुफ्तगू की। आप भी समाप्त कीजिए।

0: अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है। मैं मोहम्मद रहीम शामी, प्रेसिडेंट ऑफ यूसी पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन। मेरे साथ मेरी वाइस प्रेसिडेंट आयुषा इम्तियाज एंड हेरा मौजूद हैं। हम आज की कवाली होस्ट, वी आर द ऑर्गेनाइजर्स फॉर द कवाली नाइट। हम स्टूडेंट्स हैं, वी आर द पार्ट ऑफ यूसी पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन। हमने कम्युनिटी के लिए सेकेंड बड़ी कवाली होस्ट कराई है और ये पहली बार हुआ है कि किसी एसोसिएशन ने कराई है। And I would like our VP to say something.
1: That's about it. This is the biggest one event that we have in this semester. I hope you all enjoyed it.

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद मोंगा है और मैं मोंगा ग्रुप का ओनर हूँ। हम लोगों ने इस वक्त यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा के अंदर ये पाकिस्तानी यूसी स्टूडेंट एसोसिएशन में राहिम शामी ने बहुत अच्छी ये महफिल सजाई, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो कव्वाल हैं ये कुछ इंडिया से हैं, कुछ पाकिस्तान से, कुछ फिजी से हैं। इस तरह की महफिलें यहाँ पर होनी चाहिए ताकि इस तरीके से हमारे बच्चे और हम लोग एटलीस्ट हम पाकिस्तान का मज़ा यहाँ पर उठा सकते हैं इस किस्म की कव्वालियों के साथ जो हमारे कल्चर और सूफिज़म का हिस्सा है।
1: अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़ारा हूँ कैनबरा से, और इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत रिफ्रेशिंग है। यहाँ पे आते हैं हम, अपने कल्चर से क्लोज होते हैं, और यहाँ स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की हैं इस कल्चरल इवेंट को प्रमोट करने के लिए। सारे स्पॉन्सर्स ने, सारे जो यहाँ पे ऑडियंस आए हैं टिकट्स लेकर, रियली थैंकफुल टू देम फॉर गिविंग अस सच नाइस एंटरटेनमेंट। थैंक यू।

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: हुई थी और उनकी जुगनी भी बड़ी मारूफ रही थी उनकी बहुत से गीतों की झलकियों के साथ हम आपको उनका इंटरव्यू भी सुनवाएंगे मगर पहले एक वक्फा इसके बाद ये तमाम दिलचस्पी
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: इनसाइड SBS का हालात हजरा का अवार्ड याफ्ता शो उन जरूरतमंदाना मौजूआत को जेर बहस लाता है जिस पर कोई और बात नहीं करता देखिए SBS पर इनसाइड मंगल 8:30 बजे या किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर
0: स्टार्टिंग ए न्यू लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया इजंट इजी
1: अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव रिजेक्टेड मी
2: समटाइम्स आई फील लाइक ओ आई गोना क्विट आई गिव अप
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS उर्दू के साथ मैं हूँ रेहान अलवी आइए वक्त ज़ाय किए बगैर अब आपको लिए चलते हैं गुलोकार सलीम जावेद के इंटरव्यू की तरफ वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी कारगी के बायस यहाँ भी बहुत मशहूर रहे उनकी SBS उर्दू से की गई गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं

0: सलीम, आपका नाम दो से तीन नस्लें ऐसी हैं जो आपकी आवाज से, सुर के जरिए रिश्ता बंधा हुआ है, उससे आपकी पहचान बनी हुई है। क्या आपने एक दोबारा से नया सलीम जावेद लोगों को देखने को मिला, जो पुरानी नस्ल कल्चर की तरफ लोगों को मोड़ा है, आपके मकबूल फोक या गीत या भंगड़ा गीत की लोगों में वैसे ही जोश खरोश पैदा करते हैं, तो आपके कैरियर के कौन से ऐसे पहले बड़े हिट गीत थे?
1: पहला तो मेरा जो डेब्यू एल्बम था 1985 में लॉन्च हुआ था, वो लिसन टू माई वॉइस नाम था उसका। वो एल्बम, डेब्यू एल्बम पे आप डिपेंड करते हैं, जैसे कोई मूवी आती है किसी एक्टर की तो वो उस पर डिपेंड करता है कि अगर वो हिट होती है तो फिर उसका करियर शुरू हो जाता है, अगर वो फ्लॉप होती है तो उसका करियर चला जाता है। यहाँ इंडिया पाकिस्तान में यही देखा गया है, मगर मेरे साथ बड़ा अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो पहली एल्बम थी उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे कुछ। एक तो रिमिक्स का दौर नहीं था, लोगों को पता ही नहीं होता कि रिमिक्स एक पुराना गाना उसको उठा के उसकी शक्ल चेंज करना, उसका म्यूजिक चेंज करना और उसको अलग स्टाइल में गाना। तो अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कि इसका नाम एक जमाने में आके रिमिक्स लोगों को पड़ जाएगा। हमने एक नया म्यूजिक कोशिश की थी जब वो मार्केट में आया, और यही हमने बलोची गाना एक था मेरा लैला ओ लैला, जो वैसे तो बहुत पुराना फोक है, वो फैज मोहम्मद बलोच साहब का। तो मुझे वो म्यूजिक बड़ा लड़ता था हमेशा से, मैं बोलता था यार ये कितना अच्छा गाना है मगर मुझे ये समझ में नहीं आता ना, क्योंकि बलोची जबान बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, मगर वो म्यूजिक इतना अच्छा था, वो उसको झूमने को दिल चाहता था। तो मैंने सोचा कि इस गाने को एक दो साल में रिमिक्स लोग पुकारने लगे जी, तो मेरे लकीली वो मेरे हिस्से में आ गया कि मैं पाइनियर में से हूँ रिमिक्स सॉन्ग का, भंगड़ा पाकिस्तान में लाने का, मैं उसके अंदर आ गया।
0: 1985 का जिक्र किया, उस वक्त में

0: और भी बहुत से आपके हम असर गुलकार पॉप स्टार्स थे जिनको हम आज नहीं देखते, वो गोशानशीन हो चुके हैं या उन्हें किसी और वजह से अब वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो मुसीकी के इस तवील सफर में यकीनन कई चैलेंजेस भी आए होंगे, तो एक फनकार के तौर पर सबसे मुश्किल मरहला कौन सा रहा और ये दोबारा से री एमर्ज होने का ये तजुर्बा करने में क्या चैलेंजेस रहे?
1: कोई भी नहीं चाहता कि मैं इतनी मेहनत से एक जगह पर आया हूं और मैं वो बादशाह की सीट छोड़ दूं। वक्त शोबिज़ का ऐसा जालिम है, उम्र ऐसी चीज एक है, एज फैक्टर जो आता है ना जिसे हम कहते हैं, वो आना ही आना है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी मेहनत से, अपने रख रखाव से, अपने तौर तरीकों से, अपनी कुर्बानियों से शोबिज में जो है बहुत सारी चमक धमक बहुत है। जो शो का नाम है ना शो शोबिज, वो चमक बहुत है इसमें। तो कभी कहीं आदमी चमक के अंदर खो जाता है, उसको एहसास नहीं हो पाता। तो वो शोहरत और पैसे दो एक ऐसी चीज होती है, दो के किसी एक आदमी को एक भी चीज मिल जाए, ये पैसा ही मिल जाए, तो गरीब आदमी को पैसा मिल जाए तो वो फिर उसको काबू नहीं कर पाता। तो मेरे साथ अल्लाह का बड़ा करम रहा है कि मैं शुरू से नमाज से जोड़ा रहा हूँ। तो जो बहुत सारी ऐसी बुराइयां, बहुत सारी वो चीजें थी शोबिस की होती हैं, अल्लाह ने उससे मुझे बचा के रखा है। एक तो मेन तो ये फैक्टर है इसका। और फिर मैं काम करता रहा हूँ, मैंने हर दौर में ना, मैंने बहुत तकलीफों के साथ ना ये हासिल की है ये जगह ना, तो मैं इसको इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता। अब उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, नया म्यूजिक लेके आना है और अपने आप को भी ना वो दोबारा से ना नित नए स्टाइल में लाना है। जैसे अगर आप, एज तो मेरी बढ़ रही है, सबकी बढ़ती है फैक्टर के साथ साथ, मगर आप उसको अपने आप को ना ग्रूम करें थोड़ा सा, कि हमने देखा बड़े बड़े 70-70 साल के लोग इतने हसीन लगते हैं, तो वो अपने आप को ख्याल रखते हैं। मैं ग्रूम करता हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, वॉक करता हूँ, खाने पीने का कंट्रोल करता हूँ, ख्याल करता हूँ। फिर म्यूजिक के अंदर ना मैं इन रहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बस मेरी असल जो पावर है ना वो है स्टेज की। क्योंकि लोग हिट तो हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, उनका सीन ही होता है कि वो फिर गा नहीं सकते लाइव। वाके लाइव गाना एक होता है, तो मैंने शुरू लाइव शो से किया था, बाद में कैसेट्स आई, बाद में फिर टीवी पर आया।
0: कौन सी चीज है ऑस्ट्रेलिया की ऐसी जिसने आपको मुतासिर किया?
1: एक तो ना पीसफुल माहौल है यहाँ का ना, बहुत अफरा तफरी नहीं, भगदड़ नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं, डिसेंट लोग हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं होता कि लोग रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी बात पे ना। तो और फिर यहाँ का जो सिस्टम है, जो यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसने बड़ा कंट्रोल किया और बड़ी अपने लोगों के लिए ना बड़ी वो ख्याल कर। तो मुझे ये चीज इतनी अट्रैक्ट की कि यार ये कैसे लोग हैं कि ये अपनी कौम के लिए ऐसा सोच रहे हैं।
0: तो जनरेशन को मुतासिर किया है, तो आपने बहुत से वो दौर देखे हैं जब लोगों के प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ होते थे। अब एक नया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है जो लोगों की फिंगर टिप्स के ऊपर मौजूद है, जहां लोग फौरी रद्द अमल देते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत से लोगों को तंकीद और ट्रॉलिंग का सामना भी करना पड़ता है। आप इस तरह के मनफी तबसरों या तनाजात को किस अंदाज में हैंडल करते हैं?
1: अच्छा, एक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए मनफी जो है ना बड़ा कम आता है, मगर कोई लिख भी देता है तो मैं उसको कोई ऐसी बात नहीं करता कि ठीक है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो यही समझता है। बहुत सारे लोग अपने नफरत का इजहार कर देते हैं, शोबिस के अंदर जो होता है ना जेलिसी का चक्कर बहुत है ज्यादा, तो ऑडियंस से ज्यादा जो फील्ड के जो लोग होते हैं ना वो इस चीज को करते हैं ज्यादा, तो हमें अंदाजा हो जाता है, मगर मैं उसका रिएक्ट नहीं करता उस बात पे। मैं ये देखता हूँ कि अगर मुझे 1 लाख लोग पसंद कर रहे हैं, अगर 2 लोगों ने 1 लोगों ने नापसंदगी का इजहार किया तो मैं उसका रिएक्ट नहीं करता, उसको बोलता हूँ ठीक है। और फिर मैं उस पर गौर करता हूँ कि यार ये जो बात कर रहा है कहीं इसमें ये खामी मेरे में है तो नहीं। और ऐसा बेशुमार मर्तबा हुआ है कि मुझे जो मैं सोच रहा होता हूँ कि यार ये मैं गलत करता हूँ और वो सामने वाले ने भी बात की, तो फिर मैं अपने थोड़ा सा इम्प्रूव करता हूँ उस चीज तो। मगर अब मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया जब से आया हूँ तो बेशुमार लोग मुझसे ऐसे जुड़ गए हैं, जो नए बच्चे जुड़ गए हैं उनको पता चला गया यार ये म्यूजिक तो इन्होंने गाया था जो अब वो जाके अली जफर गा रहे हैं, दूसरे लोग गा रहे हैं, ये तो ये 85 में गा चुके हैं लैला लैला जैसे अली जफर ने गाया। तो लोगों को, बच्चों को पता चल रहा है यार ये तो इनका गाना था, तो उससे मुझे फायदा होता है। जब वो ओरिजिनल चीज होती है ना वो बच्चा उससे अट्रैक्ट करता है कि यार असल आदमी तो ये है, तो मुझे उसका फायदा हो गया। मुझे अली जफर के गाने से नुकसान नहीं हुआ, पहले मुझे थोड़ा सा वो लगा था, मगर उससे मुझे फायदा हो रहा है। जुगनी का जो म्यूजिक है वो इंडिया में पूरा कॉपी किया गया है। वो एक गाना था, ये खबर छपा दो अखबार में, अब वो दोबारा से रीडू किया उन्होंने उसी गाने को, कोई 25-30 सालों के बाद ने गाया। ओए अली पाकी मामदा में विरद करा दम दम हुण वे तजल्ले नूर दे जू कतरे शबनम मैं पढ़ी नमाजा इश्क दी दूर होवे सब गम ते मैं गावा जुगनी तेरी मैं गावा जुगनी तेरी मैं गावा जुगनी सजना दी अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी हाय सोनिया तेरी जुगनी मौला वाले या तेरी जुगनी।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे मारूफ गुलकार सलीम जावेद से की गई बातचीत। उनकी जुगनी बड़ी मशहूर रही है, आइए उसकी झलक आपको सुनवा देते हैं।

अभी आप ऑस्ट्रेलिया आए हुए गुलकार सलीम जावेद का इंटरव्यू सुन रहे थे, और यहाँ आपको याद दिलाएं कि SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे पॉप देसी पर नशर होती हैं। बुध का प्रोग्राम SBS 2 पर शाम 6 बजे और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को शाम 6 बजे नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताज़ा मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। और ये भी एक आपके लिए याद दहानी कि हमारे बहुत सी वीडियोज़ और रील्स भी अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पेजेस पर पेश करते हैं। instagram.com/sbsurdu, facebook.com/sbsurdu या youtube.com/@sbssouthasian/urdu पर जाइए। और इसके अलावा आपको लाइव स्ट्रीम और प्रोग्रामों के मुंतखब हिस्से sbs.com.au/urdu पर मिलते हैं। आप हमें फेसबुक और पर भी पाएंगे, जहां पर मौजूद हैं वीडियोस, अहम खबरों की डेली पोस्ट, तस्वीर के एल्बम्स, ब्रेकिंग न्यूज़ और ऑस्ट्रेलिया भर की कम्युनिटी खबरें। हमारी मोबाइल ऐप SBS ऑडियो के नाम से एप्पल और एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए बिल्कुल मुफ्त मौजूद है। आप उसे डाउनलोड कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल पर और फिर उर्दू लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लीजिए उसमें अपनी फेवरेट लैंग्वेज के तौर पर, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जब भी हमारा नया पॉडकास्ट पब्लिश होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब नया प्रोग्राम हमारा जा रहा होगा ऑन एयर तब भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो उसमें एक अंग्रेज़ी का सेक्शन भी मौजूद है। अगर आप उर्दू समझ सकते हैं मगर पढ़ नहीं सकते तो आप उस सेक्शन में जाके उर्दू के पॉडकास्ट सुन सकते हैं। हम बहुत सी वीडियोज़ भी आपके लिए लेकर आते हैं, बहुत से अदाकारों और शोबिज़ के अहम अफराद की वीडियोज़ भी मौजूद रहती हैं हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। अब नशरियात बिल्कुल अपने अख्ताम की तरफ पहुंच रही हैं और हम अब आपसे जुमे को फिर मिलेंगे और उसके बाद बुध को दोबारा मुलाकात होगी। और हमारा प्रोग्राम जी जो अगर आप वेब पेज पर सुनना चाहें कैचअप के ज़रिए, तो उसे भी आप उर्दू रेडियो पॉडकास्ट सेक्शन में पाएंगे। और जब तक नया प्रोग्राम नहीं आ जाता तब तक वो मौजूद रहता है। तो मुझे तो आप इजाज़त दीजिए, अली ज़फ़र को मैं आपको सुनवा रहा हूँ। ये वही गीत है जिसका थोड़ी देर पहले सलीम जावेद जिक्र कर रहे थे, लैला ओ लैला, जिसे कोक स्टूडियो के लिए अली ज़फ़र और रूज फातिमा ने मिलके गाया। रूज फातिमा बिल्कुल बलोची गुलोकारा हैं, छोटी सी बच्ची थी उस वक्त, 12 साल की उम्र थी उनकी जब ये वीडियो रिलीज़ हुई। उनको सुनिए और मुझे यानी अपने मेज़बान रेहान अलवी को यहीं पर इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया अल्लाह ने के बान।

0: 10.09 सेकंड विच 100 मीटर दी दौड़ पूरी कीती। गुरिंदर वीर सिंह दी इस इतिहासिक जीत ते एक्टर अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते लिखा है कि ओ इस उपलब्धि तो सचमुच हैरान ने। अक्षय ने उना दिया पंजाबी जड़ा अते आर्म फोर्सेस नाल जुड़े उना दे जुड़ाव ते माण जताया। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने इस नू पूरे मुल्क दे लई माण दी गल दसी। अते क्रिकेटर युवराज सिंह ने कहा है कि गुरिंदर वीर दी ए कामयाबी भारत दे आने वाले नवे रेसर्स नू प्रेरित करेगी। बॉबी देओल स्टारर फिल्म बंदर दा नवा गाना पिंजरा रिलीज कर दिता गया है।
1: दाम पिंजरा बैल बन के कर रहा वो काम पिंजरा, वो काम पिंजरा।
0: फिल्मों विच अपनी शानदार एक्टिंग दे नाल बॉलीवुड अते साउथ विच अपना नाम कमाउन वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने इंटरनेशनल लेवल ते इंडिया नू रिप्रेजेंट किता है। ओ टोक्यो विच ग्लोबल एनीमे अवार्ड्स विच बतौर प्रेजेंटर शामिल हुई। तुहानू दस दिए कि एनीमे अवार्ड्स दुनिया भर दे कलाकारा क्रिएटर्स अते एनीमे लवर्स नू इकट्ठा लेण वाला वड्डा प्लेटफॉर्म है। अली फजल अते सोनाली बेंद्रे स्टारर आउन वाली इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर सीरीज राख दी रिलीज डेट हुन सामने आ गई है। मेकर्स दे वलो सोशल मीडिया ते सीरीज तो अली फजल दा एक पोस्टर सांझा किता गया है। इस दे नाल ही कैप्शन विच मेकर्स ने लिखया है, दबे हुए सच हमेशा अपना रास्ता खोज ही लैंदे ने। राख 12 जून तो ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ते स्ट्रीम करेगी। मशहूर प्रोडक्शन हाउस होमले फिल्म्स हुण एक नवे आते वखरे अंदाज दी कहानी लेके आ रहा है। मेकर्स ने अपनी पहली हिप हॉप म्यूजिकल स्टोरी ये तो का नॉय दा ऐलान कर दिता है। इस फिल्म दे जरिए प्रोडक्शन हाउस नौजवाना दी दुनिया उना दे सुपनिया आते म्यूजिक कल्चर नू वड्डे पर्दे ते पेश करेगा। इस प्रोजेक्ट नू सिर्फ एक भाषा तक सीमित नहीं रखा गया है। फिल्म दे हिंदी वर्जन YKN पहला वार दा भी ऐलान किया गया है। ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਮਾਤ੍ਰਭੂਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਮਾਤ੍ਰਭੂਮੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਚਿਤ੍ਰਾਂਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अशोक खरा दा नाम तां हर किसे नहीं सुनिया होएगा। अशोक खरा ते इल्जाम है कि उन्होंने कई महिलावां दा यौन शोषण अते उन्हां नूं टॉर्चर किया है। इसी दरमियान खबर मिली है कि इस मामले ते फिल्म बनन जा रही है जिस विच लीड रोल दे लई इमरान हाशमी दा नाम सामने आया है। अशोक खरा दा मामला जद सामने आया सी तां लोग काफी हैरान होए सन। इस मामले नूं खरात फाइल्स दे नाम नाल भी जाणिया जांदा है। हुण इस मामले ते महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स नां दी फिल्म बन रही है जिस नूं स्वरूप सावंत डायरेक्ट करन वाले ने। ए फिल्म 2 अक्टूबर 2026 नूं सिनेमा घरा विच दस्तक देण वाली है। एक्टर सलमान खान ने रणवीर सिंह अते फिल्म मेकर फरहान अख्तर दे दरमियान चल रहे विवाद नु सुलझाउण दे लई पहल कीती है। ए विवाद रणवीर सिंह दे अचानक फिल्म डॉन 3 नु छड्डण दे बाद शुरू होया सी, जिस दे बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने रणवीर दे खिलाफ नॉन कोऑपरेशन नोटिस जारी कर दिता सी। सलमान ने दोना नाल फोन ते गल कीती अते दोना दा वखो वख पक्ष सुनिया। सलमान खान ने फरहान अख्तर नु कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री विच क्रिएटिव डिफरेंसेस होना बेहद आम गल है, इस नु लेके विवाद नु होर ज्यादा वधाना ठीक नहीं है। उन्हां ने फरहान नु सलाह दित्ती है कि ओ इस मामले नु इत्थे ही खत्म करन। सलमान खान ने दोना नु कहा है कि जद ए पूरा मामला पूरी तरह दे नाल शांत हो जाएगा ता उन्हां नु भविख विच मुड़ तो एक दूजे दे नाल काम करन दे लई तैयार रहना चाहिदा है। डायरेक्टर इम्तियाज अली इन्हीं दिनी अपनी आने वाली फिल्म मैं वापस आऊंगा नु लेके चर्चा विच ने। उन्होंने फिल्म दे गाने मस्कारा दी शूटिंग नु लेके एक मजेदार किस्सा दसिया। उन्होंने दसिया कि इस गाने दी शूटिंग पंजाब दे मलेरकोटला शहर विच कीती गई, जो मशहूर गीतकार इरशाद कामिल दा होम टाउन है। ए वही शहर है जिथो इरशाद कामिल ने अपने सुपनिया दी शुरुआत कीती। एक्टर ईशान खट्टर हॉलीवुड एक्टर क्रिस्टन स्टीवर्ट अते कई होर मन्ने परमन्ने नावां दे नाल बियारित्स फिल्म फेस्टिवल दे चौथे एडिशन विच ज्यूरी पैनल विच शामिल होंगे। ईशान खट्टर दे इंटरनेशनल करियर दी शुरुआत उन्हां दी पहली फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स दे नाल हो गई सी। इस तों बाद उन्हां ने 2021 विच लियोनार्डो डिकैप्रियो अते जेनिफर लॉरेंस स्टारर फिल्म डोंट लुक अप विच एक कैमियो भूमिका निभाई। 2020 विच उन्हां ने मीरा नायर दी ब्रिटिश सीरीज असुटेबल बॉय विच तब्बू दे नाल मुख भूमिका निभाई सी। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2025 ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ ਹੋਮ ਬਾਉਂਡ ਨੂੰ ਆਸਕਰ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਾਸੂ ਭਗਨਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪੂਜਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟਿਪਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਡੇਵਿਡ ਧਵਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵਿੱਚ 1999 ਦੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਬੀਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ 2 ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਵਾਸੂ ਭਗਨਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਪਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਜੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ 5 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ 2 ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣੇ ਚੁਨਰੀ ਚੁਨਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਸੋਨਾ ਹੈ ਨੂੰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਬਾਹੋਂ ਮੇਂ ਚਲੇ ਆਓ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਡਰਨ ਗਾਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਾਡਰਨ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਿਰਫ ਧੁਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਹਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਛਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪੰਚਮ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਡਰਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।

दोस्तों एमी विर्क दे इस गीत दे नाल ही प्रोग्राम नूं समेटण दा समां हो गया जी। उम्मीद करदे हां गीत ते सारा प्रोग्राम तुहानूं जरूर पसंद आया होएगा। अपनी फीडबैक साढ़े तक पुजदी करते रहा करो। punjabi.program@sbs.com.au ते ईमेल कर सकते हो। तो इजाजत मिलांगे नवें प्रोग्राम दे विच। सुनते रहो SBS पंजाबी।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online और radio पर.
2: SBS हिंदी पर आपका स्वागत है. मेरा नाम है नबील. और शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर यह कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, सबसे पहले आपको उसके बारे में बता देते हैं. आज के शो में सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है. 1 जुलाई से लाखों एम्प्लॉयज़ को 4.75% वेज इंक्रीज मिलेगा, 4.75%, जबकि सबसे कम वेतन पाने वाले कुछ वर्कर्स की इनकम में करीब 6% तक की बढ़ोतरी होगी. ट्रेड यूनियंस ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन बिजनेस ग्रुप्स और अपोजिशन का कहना है कि इससे कॉस्ट बढ़ सकती हैं और महंगाई पर असर पड़ सकता है. माफ़ करिएगा, इसी रिपोर्ट से शो की शुरुआत करेंगे और उसके बाद आएगी इंडिया रिपोर्ट जिसमें होंगी भारत की कुछ खास खबरें. फिर लेकर आएंगे SBS हिंदी की फाइनेंस सीरीज मनी मैटर्स का 3रा एपिसोड जिसमें हम समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में साइड हसल्स और कैश जॉब्स करने वालों की टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कौन से लीगल ऑब्लिगेशन ज़रूरी हैं और इससे जुड़े क्या रिस्क होते हैं. तो मनी मैटर्स का ये एपिसोड ज़रूर सुनिएगा अगर आप भी अपनी नौकरी के साथ साथ कुछ साइड हसल्स या कैश पे जॉब करते हैं. और अंत में सिडनी के ब्लैक टाउन सिटी फेस्टिवल की एक झलक जहां स्ट्रीट्स अलाइव एंड परेड डे में मल्टीकल्चरल सेलिब्रेशंस देखने को मिले. भारतीय समुदाय सहित कई ग्रुप्स ने अपने कल्चर, म्यूजिक और ट्रेडिशंस को एक बड़े ही वाइब्रेंट तरीके से शोकेस किया. तो ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी एक एक करके और बहुत सारे गाने हैं आज, एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी गाने होंगे जो बीच बीच में हम आपके लिए प्ले करते रहेंगे. तो एंजॉय करते हैं आज का शो और शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूज़ फ्लैश के साथ जिसमें है ऑस्ट्रेलिया की कुछ खास खबरें, कुछ भारत से और कुछ विश्व से. बुधवार 3 जून की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल के जवान आने वाले हफ्तों में पोलैंड भेजे जाएंगे जहां वो रशिया के साथ चल रहे युद्ध में यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे. रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई सैनिक नॉर्वे के नेतृत्व वाले एक ऑपरेशन में शामिल होंगे जिसमें उन्हें बेसिक इन्फेंट्री टैक्टिक्स, लीडरशिप और मिलिट्री स्किल्स सिखाई जाएंगी. ऑस्ट्रेलिया 2023 से यूनाइटेड किंगडम आधारित एक ऑपरेशन के जरिए इसी तरह का समर्थन दे रहा है, लेकिन अब सरकार का कहना है कि यूक्रेन के पास ट्रेनिंग देना ज़्यादा सही है. एक डिफेंस समिट में रिचर्ड माल्स ने कहा कि यूक्रेन को समर्थन देना रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जरूरी है. विदेश मंत्री पेनी वोंग ने ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप पनडुब्बी समझौते में हाल ही में हुए बदलावों का बचाव किया है. जबेड ह्यूजिक ने कहा कि सरकार को इस पर फिर से बातचीत करनी चाहिए. लेबर पार्टी के बैकबेंचर ने कहा कि पार्टी के अंदर इस समझौते को लेकर कुछ असंतोष है और उन्होंने सरकार से अपनी प्रतिबद्धता पर फिर से विचार करने की अपील की है. रक्षा समझौते को लेकर चिंताएं तब और बढ़ गईं जब ये घोषणा हुई कि ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिका से केवल सेकेंड हैंड न्यूक्लियर पावर पनडुब्बियां ही खरीदेगा. हालांकि चैनल 9 के टुडे शो में बातचीत के दौरान पेनी वोंग ने इस मुद्दे पर किसी भी तरह के वोट की संभावना को खारिज कर दिया. पूर्व कैनबरा लिबरल्स नेता लियान कैसले ने पार्टी से पूरी तरह इस्तीफा दे दिया है. यह कदम उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पद छोड़ने के 7 महीने बाद उठाया है. यरबी के मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली लियान कैसले ने कहा कि पार्टी में टॉक्सिक कल्चर है और अब वो इसका हिस्सा नहीं रह सकती. उन्होंने कहा कि अब वो इंडिपेंडेंट के रूप में काम करेंगी और उन्होंने 18 महीनों तक बुलिंग, इंटिमिडेशन, झूठ और धमकियों का सामना करने का आरोप लगाया है. लिबरल नेता मार्क पैटर्न ने टॉक्सिक कल्चर के आरोपों को खारिज किया है, लेकिन कहा है कि संगठन ने बुलिंग से जुड़ी चिंताओं को संबोधित किया है. ऑस्ट्रेलियाई लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अवैध ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट्स से जुड़े स्कैम्बलिंग स्कैम्स में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. टेलस्ट्रा के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डैरन पॉली ने कहा कि तेजी से बढ़ने वाले ऑनलाइन खतरों में स्कैम गैम्बलिंग यानी अवैध ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट से जुड़े स्कैम्स भी एक हैं, जहां लोग पहले से ही हर साल लगभग 2.2 अरब डॉलर अलग अलग तरह की फाइनेंशियल ठगी में खो देते हैं। ये स्कैम्स अक्सर आसान जीत का लालच देते हैं और फिर लोगों को पे आई डी जैसे माध्यमों से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं, जिससे पीड़ितों को आर्थिक नुकसान के साथ उनके बैंकिंग डिटेल्स और पहचान दस्तावेजों का भी खतरा होता है। टेलस्ट्रा ने कहा कि उसने इस साल लगभग 1800 गैम्बलिंग से जुड़े डोमेन्स ब्लॉक किए हैं, जिससे 2 मिलियन से अधिक संभावित विजिट्स रोकी गई हैं। ईरान और अमेरिका दोनों ने मिसाइल हमले किए हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर गल्फ रीजन में हमले करने का आरोप लगा रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि उसने बहरीन में स्थित यूएस 5th फ्लीट के मुख्यालय को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। वहीं अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने ईरान के खश्म आईलैंड पर सेल्फ डिफेंस के तहत हमले किए, जो तेहरान की ओर से किए गए कथित हमलों के जवाब में थे। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए बातचीत जारी है। और अब खबर भारत से। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत डिपके 6 जून को दिल्ली पहुंचेंगे और जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि वो जनता के समर्थन पर भरोसा कर रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने भी कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया है और कहा है कि उन्हें ये संगठन देशभक्त और देश सुधार के लिए त्याग करने वाला लगा। सोनम वांगचुक ने यह भी बताया कि पहले उन्होंने इस समूह पर सवाल उठाए थे, लेकिन बाद में अभिजीत डिपके से बातचीत और समर्थन से जुड़े आंकड़े देखने के बाद उन्हें भरोसा हुआ कि इसका कोई छिपा उद्देश्य नहीं है। ये था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। न्यूज़ फ्लैश के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और शो की पहली रिपोर्ट आपके लिए प्ले करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लाखों कर्मचारियों को 1 जुलाई से 4.75% वेतन वृद्धि मिलेगी, जबकि सबसे कम वेतन पाने वाले कुछ कर्मचारियों की आय लगभग 6% तक बढ़ेगी। श्रमिक संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है, लेकिन व्यापारिक समूहों और विपक्ष का कहना है कि इससे व्यवसायों पर दबाव बढ़ सकता है और भविष्य में महंगाई पर भी असर पड़ेगा। आइए सुनते हैं इसी से जुड़ी वैशाली जैन की ये रिपोर्ट।
3: ऑस्ट्रेलिया में लाखों कर्मचारियों को जुलाई से वेतन में 4.75% की बढ़ोतरी मिलने वाली है। ये फैसला फेयर वर्क कमीशन की वार्षिक वेतन समीक्षा के बाद आया है। श्रमिक संगठनों ने इस बढ़ोतरी का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के दबाव से उबरने में मदद मिलेगी। वहीं व्यापारिक संगठनों का कहना है कि इस कदम से महंगाई और बढ़ सकती है तथा व्यवसायों, खासकर छोटे कारोबारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली जैन और अब आइए सुनते हैं इस खबर को विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया भर में लाखों कर्मचारियों को 4.5% वेतन वृद्धि मिलेगी। फेयर वर्क कमीशन ने अपनी वार्षिक न्यूनतम वेतन यानी एनुअल मिनिमम वेज और अवार्ड वेतन दरों की समीक्षा के बाद ये फैसला सुनाया है। फेयर वर्क कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस एडम हैचर ने इस निर्णय की घोषणा की। नई वेतन दरें 1 जुलाई से लागू होंगी।
4: Of all employees in Australia, amounting to almost 2.8 million people, are paid at an applicable minimum wage rate under a modern award. Accordingly, such employees and their employers are those principally affected in a direct way by this decision.
3: पिछले वर्ष 3.5% वेतन वृद्धि और अप्रैल में 4.2% की वार्षिक महंगाई दर के बाद वास्तविक वेतन और महंगाई के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा था। रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार जून के अंत तक महंगाई 4.8% तक पहुंच सकती है। ऐसे में इस अंतर को पाटने के लिए 5% वेतन वृद्धि आवश्यक मानी जा रही थी। हालांकि जस्टिस हैचर ने कहा कि आयोग का मानना था कि इतनी बड़ी वृद्धि देना ना तो विवेकपूर्ण होगा और ना ही व्यावहारिक।
4: Taking into account all of these matters, we have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees, reliant on modern award wage rates, that would be sufficient to close the real wage gap entirely.
3: जीवन यापन की बढ़ती लागत यानी बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग इस निर्णय के केंद्र में रही है, क्योंकि बढ़ती महंगाई का असर घर परिवारों के बजट पर गहराई से पड़ रहा है। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए फेयर वर्क कमीशन ने सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक वेतन वृद्धि की घोषणा की। कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस एडम हैचर ने कहा कि सबसे निचले स्तर की मॉडर्न अवार्ड वेतन श्रेणियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने के कारण सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वास्तव में लगभग 6% तक वेतन वृद्धि मिलेगी।
4: These adjustments will result in the lowest wage rate in the modern award system applicable to ongoing employment being $1,004.90 per week or $26.44 per hour, and the lowest wage rate applicable to entry level employment for a period of no more than 6 months being $978.10 per week or $25.70 per hour. Our estimate that this is that this will affect about 100,000 of the lowest paid employees.
3: Australian Council of Trade Unions यानी ACTU ने वेतन में 6% वृद्धि की मांग की थी, जो मंजूर होने पर रिकॉर्ड की सबसे बड़ी वेतन वृद्धि होती। हालांकि आयोग ने इससे कम वृद्धि को मंजूरी दी, फिर भी ACTU की अध्यक्ष सैली मैकमैनस ने कहा कि फैसले का स्वागत किया गया है।
5: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, lowest paid Aussies are the ones that are struggling the most with cost of living, and they need this pay rise absolutely. This will allow them to not just pay their bills, but to start making up some of what they've lost since 2021. One of the big things that the Fair Work Commission said today is that they recognise that previous inflation after COVID left low-paid workers behind where they were in 2021, and so today they've decided not just that people should keep up with cost of living with inflation, but start to continue to get ahead, and that's really, really welcome.
3: वहीं नियोक्ता संगठनों यानी एम्प्लॉयर ग्रुप्स ने वेतन में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी की मांग की थी। उनका तर्क था कि 6% की वृद्धि से व्यवसायों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और दिवालिया होने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ सकती है। ऑस्ट्रेलियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी ACCI ने 3.5% वेतन वृद्धि की सिफारिश की थी। संगठन का कहना था कि अप्रैल में 3.4% रही अंतर्निहित महंगाई दर यानी अंडरलाइंग इन्फ्लेशन वेतन वृद्धि तय करने के लिए अधिक उपयुक्त मानक है। ACCI के नीति प्रमुख डेविड अलेक्जेंडर का कहना है कि इस फैसले के बाद कई व्यवसायों विशेषकर छोटे और मध्यम कारोबारों को अतिरिक्त आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
6: For some small businesses, this will be too much to bear. So they're being asked to wear an increase in their wage costs of 4.75%. So for some businesses, they will pass that on and it'll end up in inflation. For others, they'll wear it themselves. It could be the tipping point for some businesses. Others will scale back their investment intentions. So this is not good news for the business community.
3: फैसले से पहले फेडरल सरकार ने सतत और संतुलित वेतन वृद्धि की वकालत की थी, लेकिन उसने किसी निश्चित प्रतिशत की सिफारिश नहीं की थी। फेडरल कोषाध्यक्ष जिम चामर्स ने कहा कि ये वेतन वृद्धि वही है जिसकी ऑस्ट्रेलियाई कर्मचारियों को आवश्यकता थी और जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला कामगारों को बढ़ती जीवन यापन लागत से राहत देने में मदद करेगा।
7: This is the sustainable real wage increase that the government has called for, and we're pleased to see it delivered in today's decision. This means that the minimum wage is up more than $12,000 a year since we came to office 4 years ago. It's about a 30% increase in the minimum wage, which is a very good thing. When it comes to these cost of living pressures that Australians are confronting right now, we see decent pay as part of the solution, not part of the problem. And so we're pleased to see those cost of living pressures recognised by the Commission in this very welcome decision.
3: हालांकि इस फैसले का सीधा असर लगभग 5 में से 1 कर्मचारी पर पड़ेगा और ये राष्ट्रीय वेतन व्यय यानी नेशनल वेजेस बिल का केवल 11.2% हिस्सा ही है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में वेतन वृद्धि की मांगों पर पड़ सकता है। विपक्ष के रक्षा मामलों के प्रवक्ता जेम्स पैटरसन ने स्काई न्यूज से कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में ये वेतन वृद्धि आवश्यक थी, लेकिन लंबे समय तक इसे टिकाऊ नहीं मान सकते। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती वेतन लागत भविष्य में व्यवसायों और अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती है.
8: Look, I never begrudge a pay rise for Australian workers, and I understand why in Labor's high inflation environment this is necessary to stop Australian workers going even further backwards than they already have over the last 4 years. This is just about treading water, keeping them at the level that they've been at in recent years. But the core of the problem is out of control inflation, and we need to get that urgently under control.
3: SBS News से सिडनी लैंग की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया वैशाली जैन ने.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: SBS Audio App आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है. SBS Audio App एकदम मुफ्त है. इसे App Store या Google Play से डाउनलोड करें.
5: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है. sbs.com.au/guide पर जाएं. चैनल 33 पर SBS फूड, जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगहें, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम. SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे.
4: SBS चिल पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें. SBS चिल सुनने के लिए SBS ऑडियो ऐप पर जाएं.
6: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी. मेरा नाम है नबील और वापस हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आगे बढ़ेंगे और इंडिया रिपोर्ट सुनेंगे, जिसमें भारत की कुछ ख़ास खबरें आपको लिए हम लेकर आते हैं. लेकिन उससे पहले आज के शो का सवाल, और शो का सवाल ये है, और हम एक्चुअली वो जुड़ा है हमारे SBS हिंदी की एक नई श्रृंखला हमने शुरू की है, मनी मैटर्स, जिसमें हम फाइनेंस की जानकारी आपके लिए आसान भाषा में और सरल तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं. इस सीरीज़ के 6 एपिसोड्स हैं और आज हम उसका 30 एपिसोड आपके लिए प्ले करेंगे. और आज का जो थीम है वो होगा साइड हसल्स या कैश जॉब्स. इसी से जुड़ा है हमारा सवाल कि हम में से कई लोग जब ऑस्ट्रेलिया आते हैं और अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो हम कोई ना कोई साइड जॉब, साइड हसल या एक्स्ट्रा कुछ कमाई के लिए कोई ना कोई जॉब हमने शायद करी होती है. वो स्ट्रगलिंग डे में भी हो सकता है और शायद वो एक्स्ट्रा कमाई के लिए भी हो सकता है. तो आप ने ऐसी कौन सी जॉब करी है, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो बस लिख भेजिए, जैसे कि रेस्टोरेंट में काम करना या शायद कैब ड्राइविंग करना. और 04397997667 हमारा नंबर है, आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा. और अभी बढ़ते हैं आगे और सुन लेते हैं इंडिया रिपोर्ट, जिसमें होंगी भारत की ख़ास खबरें.
7: भारत और वेनेजुएला अपने संबंधों को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं. दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने को लेकर समझौता होने की संभावना है. वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से भारत की यात्रा पर हैं. उनकी इस यात्रा के दौरान ऊर्जा के अलावा स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर फोकस रहेगा. 5 दिनों की उनकी यात्रा के बारे में बताते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कहते हैं,
8: During the visit, acting President Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister. The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in the areas of energy, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation, and renewable energy. As part of the program, they will be visiting several sites. India, as you know, India is an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian public sector undertakings have made significant investment in Venezuela in the energy sector, and they are keen to explore more opportunities to further enhance their presence.
7: नेपाल के साथ सीमा विवाद पर भारत ने कहा है कि इसमें तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है. भारत का बयान ऐसे समय आया है जब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह चीन और ब्रिटेन से दखल देने की मांग कर रहे हैं. भारत का कहना है कि दोनों देशों के बीच विवाद के ज्यादातर मामले सुलझा लिए गए हैं। रणधीर जायसवाल ने बताया कि 98% सीमा निर्धारण पूरा हो चुका है।
8: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है, फिर भी कुछ हिस्सों में कुछ मसले हैं जिसको सुलझाना बाकी है। गंडक नदी के बहाव में परिवर्तन होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। सभी संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
7: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE इन दिनों विवादों में है। बोर्ड का ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में लगातार किरकिरी को देखते हुए सरकार ने बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। उनकी जगह लोखंडे प्रशांत सीताराम को नया चेयरपर्सन बनाया गया है। वहीं वरुण भारद्वाज को सचिव पद की जिम्मेदारी मिली है। ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM में हुई गड़बड़ी की जांच कराने की घोषणा भी हुई है। एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गई है जो OSM में सेवाओं के टेंडर और अलॉटमेंट में गड़बड़ी की जांच करेगी। सरकार के इस कदम को विपक्ष ने लीपा पोती बताया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। और अब चर्चा पश्चिम बंगाल की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी TMC को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में TMC को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से पार्टी में असंतोष गहराता जा रहा है। चुनाव बाद हिंसा में पार्टी नेताओं पर हमले भी हुए हैं। इसी के विरोध में मंगलवार को ममता बनर्जी ने कोलकाता में धरना दिया। राज्य की नई भाजपा सरकार पर उन्होंने कई आरोप लगाए, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। लोकतंत्र की दुहाई देते हुए ममता बनर्जी कहती हैं,
9: अगर आप लोकतंत्र को मनाने चाहते हैं तो हमारा लोकतंत्र को परंपरा मान के प्रोग्राम करने दीजिए। हमारा MP MLA को दौड़ मार्क दिखाइए, हमारा लोगों को अरेस्ट मार्क का मार्क कीजिए। आज 200 से ज्यादा लड़का को आपका गवर्नमेंट अरेस्ट जो किया है, एक पूरा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार है, माइनॉरिटीज कमीशन इसको देखिए, इसको वायलेशन है। चिल्ड्रन को भी नहीं छोड़ा गया, गर्ल चाइल्ड को रेप हुआ, FIR करने नहीं दिया।
7: ऐसा माना जा रहा है कि TMC के ज्यादातर विधायक ममता बनर्जी से दूर हो रहे हैं। कल के धरना प्रदर्शन में भी ज्यादातर विधायक नदारत ही रहे। पार्टी के 80 में से 50 विधायक अपना अलग गुट भी बना सकते हैं। भाजपा ने TMC के सारे आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए इसे TMC की आंतरिक कलह का परिणाम बताया है। और अब चर्चा तेलंगाना राज्य की। मंगलवार को राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के गठन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का आभार जताया। 2 जून 2014 को अस्तित्व में आए तेलंगाना के विकास को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार ने बड़े वादे किए हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस अवसर पर कहा,
10: जिन्होंने इस तेलंगाना के निर्माण में अपने जीवन की आहुति दी, संघर्ष किया, आज के दिन निश्चित रूप से उनको नमन करने की अपेक्षा नमन करता हूं और साथ ही साथ उनके संघर्षों के लिए निश्चित रूप से उनके सपनों का तेलंगाना जैसा बनना चाहिए, शायद अभी भी उस दिशा में हम पीछे हैं, पर हमारा सपना भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि निश्चित रूप से हम तेलंगाना के विकास के लिए आगे भी संघर्ष करेंगे।
7: तेलंगाना के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में आज DK शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुना है। डीके शिवकुमार के साथ 12-13 मंत्री शपथ ले सकते हैं। मंगलवार को डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की नई दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में मंत्री परिषद को लेकर आपसी सहमति बन गई है। दलित नेता जी परमेश्वर को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा सिद्धारमैया के बेटे यतिंद्र मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न, SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
6: SBS हिंदी पर वापस हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुनी भारत की कुछ खास खबरें इंडिया रिपोर्ट में, और एड ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन एड ब्रेक से पहले एक मैसेज पढ़ेंगे। आज हमने एक सवाल पूछा था कि आपकी ऑस्ट्रेलिया में या तो पहली जॉब या वो एक्स्ट्रा जॉब कौन सी थी या कौन सी है जिससे शायद आपने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा कमाई की हो। तो जफर जी का मैसेज आया, वो लिखते हैं कि माई फर्स्ट जॉब वॉज डोर टू डोर सेल्स और बड़ा अच्छा अनुभव था, और उस चीज़ ने, उस डोर टू डोर सेल्स ने, इट हेल्प मी टू नो द रूरल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। 0439-799-767 हमारा नंबर है, उस पर आप भी मैसेज करके बताइए एक एक्स्ट्रा जॉब या शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी पहली जॉब की। और हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज हमारी एक खास श्रृंखला मनी मैटर्स का तीसरा एपिसोड है, जो एक फाइनेंस सीरीज़ है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सरल भाषा में और सरलता से बता पाएँ फाइनेंस से जुड़ी कुछ जानकारी। और आज उसका थीम है कैश जॉब या फिर साइड हसल्स, जो काफ़ी लोग ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी टैक्स ऑब्लिगेशन होती हैं और कई और पहलू। तो वो रिपोर्ट आपको सुनाएंगे एड ब्रेक के बाद, लेकिन एड ब्रेक और एक गाना उसके बाद, तो सुनते रहिए SBS हिंदी। मिलता हूँ मैं आपको एड ब्रेक के बाद।
11: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: SBS Sport. खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह, साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/sport पर जाएं।
5: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं।
6: The एड ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप सुन रहे हैं SBS हिंदी. और अगली रिपोर्ट पर जाने से पहले अब मौका हो गया है एक गाने का, तो प्ले करते हैं गाना आपके लिए और उसके बाद वापस आएंगे और प्ले करेंगे आपके लिए मनी मैटर्स का तीसरा एपिसोड. तो एंजॉय करिए गाना. मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी सी देर में.

0: SBS हिंदी पर वापस एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और हमारी आज की जो अगली रिपोर्ट है वो है SBS हिंदी की खास श्रृंखला मनी मैटर्स से जुड़ी। आज हम उसका तीसरा एपिसोड प्ले करने वाले हैं और इसी से जुड़ा आज शो का सवाल भी है कि आपने अपनी फर्स्ट जॉब या फिर जो साइड हसल है जिसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है वो कौन सी करी है ऑस्ट्रेलिया में, और हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। आप ही प्लीज़ भेजिए 0439-799-767 पर। आज के तीसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि साइड हसल्स और कैश में जो काम करते हैं उनके लिए हमारी टैक्स से जुड़ी कौन कौन सी प्रतिबद्धताएं या कमिटमेंट्स होती हैं और क्या क्या खतरे भी हो सकते हैं। इस सीरीज को आप तक लेकर आ रही हैं स्वाति शर्मा। आइए प्ले करते हैं मनी मैटर्स SBS हिंदी की फाइनेंस से जुड़ी खास श्रृंखला का तीसरा एपिसोड।
1: आप सुन रहे हैं
0: मनी मैटर्स
1: SBS हिंदी की नई श्रृंखला, अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति शर्मा और आपका स्वागत है SBS हिंदी की श्रृंखला मनी मैटर्स के अगले एपिसोड में। आज का टॉपिक है एक ऐसा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है पर शायद खुलकर कोई पूछ नहीं पाता, साइड हसल्स और कैश जॉब्स के टैक्स इम्प्लिकेशंस। हम इसे कई लोग वीकेंड पर ऊबर चलाते हैं, कुछ डोर डैश पर फूड डिलीवर करते हैं, कुछ ट्यूटरिंग करते हैं, या फिर कोई घर से खाना बनाकर बेचता है, या फिर कोई एटसी या इंस्टाग्राम पर चीज़ें बेचता है, और कुछ लोग रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन और क्लीनिंग में भी कैश में काम करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ATO को इन सब के बारे में बताना ज़रूरी है? सीधा जवाब तो है हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप जहाँ से भी पैसा कमा रहे हों, चाहे वो बैंक में आए या कैश में या फिर किसी ऐप के ज़रिए, उस इनकम को टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना ज़रूरी है। और ATO के पास आज पहले से भी कई ज़्यादा टूल्स हैं ये पता लगाने के कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है। इसी पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पुनीत सिंह, जो विक्टोरिया में एक रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट हैं। पुनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका SBS हिंदी में। अगर कोई थोड़ा थोड़ा साइड पर कमा रहा है और उसने डिक्लेयर नहीं किया है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और क्या इसे बिना मुसीबत में आए फिक्स करने का कोई तरीका है?
2: जी डेफिनेटली, आज के टाइम पे ATO के पास बहुत सारे ऐसे टूल हैं विद दी एनहांसमेंट ऑफ AI। ATO के पास काफ़ी ऐसे टूल्स हैं कि वो डेटा मैचिंग कर सकते हैं, खासकर आपके बैंक्स का एक प्रॉपर रिकॉर्ड ATO के पास जाता है। कोई भी इनकम आप ले रहे हो, चाहे वो ऊबर से ले रहे हो, चाहे वो Etsy से ले रहे हो, ये रिकॉर्ड जो होता है वो साझा किया जाता है ATO के साथ। खासकर जो ये डिलीवरी राइट शेयर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनका एग्रीमेंट किया गया हुआ है ATO के साथ, दे हैव टू रिपोर्ट ऑल द इनकम टूवर्ड्स ATO ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पीपल। सो आज के टाइम पे अगर आप पैसा कमा रहे हो और आप ये सोचते हो कि ATO को नहीं पता लगेगा, आई थिंक वो एक सबसे बड़ा झूठ है। आई थिंक ATO को पता है, विद दी हेल्प ऑफ डेटा मैचिंग वो सब जानते हैं ये सारी चीज़ें ट्रेसेबल है। स्वाति, इसे फिक्स करने के लिए अगर मैं बोलूँ कि यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप इनकम डिक्लेयर की करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ जो आम दिनों में आई होती है, जैसे आप ऊबर चलाते हो, एक ऊबर एक्स चलाते हो, एंड क्या होता है कि ऊबर जब इनकम डिक्लेयर करता है ATO को विद डेटा मैचिंग, वो ग्रॉस इनकम शेयर करता है, बट जब जो क्लाइंट होता है वो ATO को अपनी GST लॉन्च करता है, वो क्या करता है कि जो ऊबर ने अपनी कमीशन काटी होती है उसके बाद जो नेट इनकम होती है उस पर वो GST, तो वो डेटा मिसमैच हो जाता है। सो इसलिए आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि जो क्रॉस इनकम होती है उसी पे आप अपना GST कीजिए, और जो उनकी कमीशन है उसको आप एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो अगर आपने GST दी है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जब ऑडिट्स आने का डर रहता है।
1: एक बहुत बात चलती है कि कैश जॉब एंड नो टैक्स, क्या ये सच है कहीं पे भी किसी भी सेक्टर में, और कि या फिर ये पूरी तरह से मिथ है? और अगर कोई कैश में जॉब कर रहा है तो ATO को पता कैसे चलता है?
2: देखो, एट द एंड ऑफ द डे हर एक चीज़ यहाँ पर ट्रेसेबल है। अगर एक एम्प्लॉयर किसी को कैश में दे रहा है, ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू क्लेम दैट एज एन एक्सपेंस, राइट? वो अपने बिजनेस में एक्सपेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा। अगर फॉर एग्जाम्पल उसका इनकम हो रहा है, एक्सपेंस नहीं हो रहा, तो वहीं पर एक रेड फ्लैग शुरू हो जाएगा। अगर किसी को कैश मिल रहा है, बींग ए सिटीजन और बींग ए टैक्स रेजिडेंट, उसका ये फ़र्ज बनता है कि वो ATO को अपनी सारी इनकम डिक्लेयर करे। ऐसा ना हो कि दो साल बाद उसको ऑडिट आ जाए एंड एट द एंड ऑफ द डे उसको वो पैसे वापस देने पड़े, जो उसका टैक्स अदा करना उसको वापस देना पड़ सकता है।
1: तो जो लोग अभी अपना कोई छोटा साइड बिजनेस शुरू करने वाले हैं या कर रहे हैं, जैसे कि फूड डिलीवरी है या ट्यूटरिंग है, उन्हें सबसे पहले कौन सी तीन चीजें सेटअप करनी चाहिए ताकि वो शुरुआत से ही सही रास्ते पर रहें?
2: जी, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप एक सही सलाहकार से मिलें जो एक अच्छा रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, डेफिनेटली वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरा, आपको कौन से स्ट्रक्चर पे जाना है। बिजनेस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आप सोल ट्रेडर से भी कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि उसमें रिस्क इन्वॉल्व्ड है, देन आई वुड डेफिनेटली प्रेफर कि वो फैमिली ट्रस्ट या यू नो बिजनेस कंपनी सेटअप करे। बट उसमें भी आपको स्ट्रक्चर देखने पड़ते हैं, देर आर क्वाइट गुड रूल्स एंड रेगुलेशन बिफोर यू गो टू दैट। तीसरा हो गया कि अगर आपने उसको किस लेवल तक लेके जाना है, ब्रांडिंग करनी, आपका एक विजन है, तो डेफिनेटली आपको ब्रांड वैल्यू पे भी काम करना पड़ेगा, डेफिनेटली बिजनेस नेम भी आपको लेना पड़ेगा, वेबसाइट भी बनानी पड़ेगी और मार्केटिंग प्लान भी होना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा अकाउंटेंट, अच्छा सलाहकार आपको मिल जाता है, यू वुड बी एबल टू डेफिनेटली गेट दीज थ्री थिंग्स सॉर्टेड।
1: जी पुनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी विषय पर, टैक्स स्कैम्स और मिस इन्फॉर्मेशन, फेक ATO कॉल्स, फ्रॉड एजेंट्स, व्हाट्सएप पर स्कैम, और क्या चैट GPT से टैक्स के सवाल पूछना सेफ है। ये सब होगा अगले भाग में। SBS हिंदी पर इस अंश को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा, धन्यवाद। SBS हिंदी की नई श्रृंखला
0: मनी मैटर्स,
1: अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में।
0: इस अंश में दी गई वित्तीय जानकारी सामान्य प्रकृति की है, SBS ना तो इससे सहमत है और ना ही असहमत। अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। SBS हिंदी पर एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी कुछ मैसेजेस पढ़ने का समय आ गया है। ईशा लिखती हैं कि हाय, आई डिड मेनी ऑड जॉब्स व्हेन आई केम हियर सेवरल इयर्स अगो। रेस्टोरेंट में काम किया, ब्यूटी सैलून में थ्रेडिंग का काम किया, शुरू के सबसे मुश्किल दिनों में किए थे ये सब काम, एंड थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट, वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू सो मच ईशा अपना मैसेज भेजने के लिए, एंड आई एम श्योर कि काफ़ी चैलेंजेस होते हैं लोगों को शुरू में अपनी मेन जिस चीज में वो जॉब करना चाहते हैं उसमें अपना एक पोजीशन और अपॉर्चुनिटी अवसर पाने के लिए, तो वक्त लगता है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो आपने अभी सुना SBS हिंदी की फाइनेंस से जुड़ी श्रृंखला मनी मैटर्स का तीसरा एपिसोड, जिसमें आज हम बात कर रहे थे कैश जॉब्स और साइड हसल्स की। इसके कुल 6 एपिसोड हैं जिसमें हमने कोशिश की है स्वाति शर्मा ने खासतौर पर कि फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आपको बहुत सरल भाषा में मिले। तो ये पूरी सीरीज़ आपको SBS हिंदी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप ज़रूर इसको जाकर सुनिएगा। और इसी से जुड़े कुछ रील्स यानी वीडियो कंटेंट भी आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। अब वक्त हो चुका है एक और गाने का, एक और गाना सुनेंगे और उसके बाद एड ब्रेक, और वापस आकर आज के शो में एक आखिरी रिपोर्ट। आप भी अपना मैसेज करिए जब तक 04397997667 पर कि आपकी वो पहली जॉब या वो एक्स्ट्रा जॉब कौन सी थी जिस जो आपने ऑस्ट्रेलिया में आकर करी थी। चलिए मिलता हूँ आपको इस गाने के बाद, सुन रही है SBS हिंदी।

0: SBS South Asian.
1: Your news from here
0: and hits from home.
2: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
3: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS हिंदी पर मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है नबील और शो में कुछ ही टाइम रह गया है और इस वक्त अब टाइम हो गया है एक गाना प्ले करने का, लेकिन उससे पहले जो आज का सवाल था वो एक बार फिर से दोहरा देंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप शुरू करते हैं तो कई सारे जॉब्स करते हैं, ऑड जॉब्स करते हैं, कैश जॉब्स करते हैं, और इसी पर जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या आपने भी ऐसी कोई जॉब की है और इन्जॉय किया है उस चीज़ को, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और अगर आप उससे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मनी मैटर्स का जो तीसरा एपिसोड है आप आज उसको हमने प्ले किया रेडियो शो पे, हमारी वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं sbs.com.au/hindi पर। चलिए इस वक्त हो गया है एक वक्त गाने का, वो गाना सुनेंगे, वापस आएंगे एक आखिरी रिपोर्ट के लिए, और रिपोर्ट के बाद आपसे लूँगा अलविदा क्योंकि हमारा शो के हम आखिरी पड़ाव पर पहुँच चुके हैं। चलिए इन्जॉय करिए गाना, मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर में।

0: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और शो की आखिरी रिपोर्ट का समय हो चुका है। ब्लैकटाउन सिटी फेस्टिवल 2026 के स्ट्रीट्स अलाइव एंड परेड डे में सिडनी की सड़कों पर बहुसांस्कृतिक रंगों का उत्सव देखने को मिला। इस मौके पर भारतीय समुदाय समेत कई समूहों ने अपनी संस्कृति, संगीत और परंपराओं की शानदार झलक पेश की। आइए सुनते हैं शशि कुमार की ये रिपोर्ट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं शशि कुमार। सिडनी के पश्चिमी क्षेत्र ब्लैकटाउन में आयोजित ब्लैकटाउन सिटी फेस्टिवल 2026 के दौरान शहर की सड़कों पर बहुसांस्कृतिक ऑस्ट्रेलिया का जीवंत रंग देखने को मिला। करीब एक महीने तक चलने वाला यह उत्सव पिछले 50 वर्षों से स्थानीय समुदायों को एक मंच पर ला रहा है और आज पश्चिमी सिडनी के सबसे बड़े सामुदायिक आयोजनों में से एक है। इस वर्ष 3 मई से 31 मई तक चले फेस्टिवल में 18 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें स्ट्रीट्स अलाइव एंड परेड डे सबसे प्रमुख आकर्षण रहा। शनिवार को ब्लैकटाउन की सड़कों पर निकली परेड में विभिन्न देशों और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले समुदायों ने उत्साह के साथ भाग लिया। पारंपरिक वेशभूषा, रंग बिरंगे झंडे, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे शहर को उत्सव के रंग में रंग दिया। 30 मई को ब्लैकटाउन CBD में आयोजित स्ट्रीट्स अलाइव एंड परेड डे में सुबह से ही संगीत, नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, फूड स्टॉल्स, बाजारों और परिवारों के लिए कई मनोरंजक गतिविधियों का माहौल रहा। पूरे दिन हजारों लोग इस उत्सव का आनंद लेते नजर आए। इसी दौरान रंगारंग कार्यक्रम का आनंद ले रहे स्थानीय निवासी हरदीप सिंह ने SBS हिंदी से बातचीत में कहा,
2: 13 साल से इधर ही रह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ।

0: The Bollywood Session on SBS South Asian.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

खाली पीली ऐसे लफड़ा करे हैं, प्यार कम ज्यादा झगड़ा करे हैं, ऐसे तड़पाए क्यों, ईगो तो दिखाए क्यों, मछले है जैसे कुनकन की मछली, स्टाइल जूट

0: बदल।
1: पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा।

रहता बेबी हाई I-S-T-A-Y-F-L-Y Fly जैसे हेलीकॉप्टर यो I'm so sick कोई भुलाओ डॉक्टर को सब कैश No checks, मैं चुप रहूं स्वैग करे मेरा फ्लेक्स मूड में आ गया बेबी तो तेरे बॉयफ्रेंड के आगे लगा दूंगा एक्स

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

से देखता है मैं गलत हूँ तू सही, देख मेरी नजरों से गलत में कुछ गलत नहीं, करना है जो करके ही रहूंगा मैंने तय किया, गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय।

यार जैसी होशियारी ये फिजूल है, तेरा ख्याल ठेकेदार है तू वक्त का, बदल के रहता है ये वक्त का उसूल है। हरकतों पे कब तलक मेरी नजर रखेगा तू, करते करते पहरेदारी एक दिन थकेगा तू। मैं मगर नहीं थकूंगा, फैसला ये है किया गलत को भी सही तरह से।

वक्त हो आप नमाज के वक्त पे याद आते हो, बड़े कम वक्त हो आप नमाज के वक्त पे याद आते हो। अगर आपको ये लगा तो बिल्कुल गलत लगा कि आप खुदा के बाद आते हो, कि आप खुदा के बाद

0: जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं। जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं। तभी तो जाते वक्त नुकसान नफा बोल दिया था, आप कभी अपनी कमियां ही नहीं बोले, वरना खुदा के सामने कबूल है तो तीन दफा बोल दिया था, तीन दफा बोल दिया था। जैसे हमें कोई नहीं मिला, आपको भी सभी नहीं मिलेंगे। खुदा हाफिज औजला जी, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे।
1: SBS South Asian।

0: खाए।
1: पे करे वीडियो ट्रेंड तेरा, लौंडा बनना चाहे बेबी बेस्ट फ्रेंड तेरा, जैसे कमर हिलाए कभी दाएं कभी बाएं, तेरा स्वैग और नखरा भी एंड तेरा।
2: अच्छा सुन, तेरी बातें टू मच है, पर लौंडे का स्वैग देसी टच है, तेरे यार का नाम बोलो शहर में, मम्मी कसम बेबी बात